0: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, गुरुदेवा की जय,
1: ओम श्री दीप नारायण भगवान की जय।

0: ओम श्री अलक पुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय देवेश्वर महादेव की जय श्री दीप नारायण भगवान की जय सद्गुरु स्वामी मध्वानंद जी गुरु भगवान की जय विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी विश्व गुरुदेव की जय
1: सुनोरी साजनी मारो लागियो पीवा सनेवा भाग्य दान्या मेरा मारी बाहा गई गुरुदेवा. In this bhajan, Sri Mahaprabhuji is saying, listen, my dear friend, I am in love with God. To my great happiness, Gurudev takes my hand and leads me across the ocean.

श्री अलकपुरी समादेव की, देवपुरी समादेव की, श्री दीप नारायण भगवान की, हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर योगीराज परम पिता परमेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की, पुण्यानंद भारती जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। सैल्यूटेशन टू अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा, माय एडोरेशन विश्व गुरु जी होली लोटस फीट, रिस्पेक्टेड ऑल द डिवाइन सन्यासीस, ऑल स्पिरिचुअल सीकर्स एस्पिरेंट्स, योगा एंड डेली लाइफ फॉलोअर्स एज वेल द फेलोशिप ऑर्गेनाइजर एंड ऑल द कर्म योगीज, भक्ति योगी, राजयोगीस, ज्ञान योगीस, प्रेजेंस हियर इन दिस डिवाइन प्लेस, ओम श्री विश्वदीप गुरुकुल, स्वामी महेश्वरानंद जी आश्रम एडुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ओम आश्रम जाडन पाली राजस्थान भारत, एंड एज वेल द थ्रू द वेबकास्ट राउंड द वर्ल्ड, द हु आर द ऑलवेज थिंकिंग टू आवर डिवाइन परंपरा एंड विश्व गुरुजी, and who are always longing to see the divine God in the heart, and the longing to get peace, harmony, and self-realization. Many blessings all of you from Alakpuri Siddhipit Parampara, and as well from Vishwaguru Ji. We are the fortunate one, the blessed one, the luckiest one, all that we have every day the satsang and divine atmospherians, divine, the all divine devotees gathering and always singing bhajans, singing mantras, doing anushtans, doing karma yogas, and the motivating to other people too, the inspiring the other bhaktas who don't know where is God, what is God doing, where is God live. Some people are, they live in this world, they are confused, or they don't have that kind education, that spiritual knowledge. So for them, we are all the motivating them and inspiring them, and as well we that example how the divine path is good for human life. So that way I thanks to our parampara rishis that they gave us the divine glory, divine path, protection and guidance. And you are all the similarly the our paramparas rishis, what they give jewelry, the divine jewelry, the God name we cannot buy in the market, the God glory we can get book, but interest, reading interest and

नारायण भगवान की जय। सो दिस इज डिवाइन भजन आवर होली गुरुजी इनर हार्ट डिवाइन फ्लावर इज केम आउट एंड ही रॉट इन बुक एंड दिस भजन इज इंस्पायरिंग टू भक्तास ओ डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स मेक योर फ्यूचर इन प्रेजेंट देयर फॉर वेक अप रिमेंबर योर ड्यूटी एंड फुलफिल योर धर्मा दैट इज ह्यूमन लाइफ गॉड ऑलवेज इज देयर ओमनीसेंट एंड ओमनी प्रेजेंस एवरीवेयर बट वी नीड टू फील एंड बी डिवोटी बी डिवाइन लाइफ सो दिस ग्लोरी ऑफ द गुरुदेव परंपरास योगीज ऋषिस एंड दे गाइडिंग अस प्रोटेक्टिंग अस एंड गिविंग ऑलवेज द डिवाइन पाथ टू अस सो वी आर वेरी हैप्पी वंस अगेन दैट वी आर हियर एंड वी आर थिंकिंग ऑलवेज टू विश गुरुजीज हेल्थ हेल्थ इज फर्स्ट वेल्थ विदाउट हेल्थ विदाउट गुड हेल्थ इज ऑल वेल्थ इज नॉट सो सो गुड फॉर ह्यूमन लाइफ सो हेल्थ इज नेसेसरी डे एंड नाइट वी आर ऑल डिवोटीज थिंकिंग अबाउट विश्व गुरुजीज हेल्थ एंड ही विश्व गुरुजी ऑल्सो थिंकिंग ऑल ऑफ अस एंड वी आर ऑल इन अंडर द वन ट्री एंड वी आर ऑल प्रेइंग अंडर डिवाइन अम्ब्रेला ऑफ माँ प्रभु जी दिस इज डिवाइन अम्ब्रेला भक्ति सागर द ओशन ऑफ द भक्ति द ओशन ऑफ द आवर भक्ति वॉट यू कॉल भक्ति दिस डिवाइन डिवाइन डिवाइन नेम ऑफ गॉड सो प्रे ऑलवेज टू विश्व गुरुजीज हेल्थ एंड रिपीट मंत्रा टाइम टू टाइम फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली व्हेन यू हैव टाइम रिपीट मंत्रा फॉर विश्व गुरुजीज हेल्थ वी आर ऑल हियर बिकॉज ऑफ विश्व गुरुजी वी आर ऑल हियर बिकॉज द होली गुरुजी वी आर ऑल हियर बिकॉज आवर परंपरा ऋषिस गेव अस गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन

0: Sridip Naran Bhagwan ki jai, Shri Sata Gurudeva ki jai.
1: गुरु चरणों में अरसत तीरत है।

शांति शांति शांति। देवपुरी महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

0: सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ ध्येयं सदा परिभवगनमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत सरभूषित महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, अन्य हमारे सभी संत वृंद एवं प्रिय बंधुओं और स्नेहवती माताओं,
1: आप ट्रांसलेट करो।
2: He's traveling in America, Australia, and everywhere, so I was hoping he will speak in English. So he gave, he greeted all of us who are currently here.
0: Param Pujya, Param Shraddhya, Ananta Sri Bhushit, Shraddhya Mahamaleshwar Swami Maheshwarananji Maharaj, jinki pavan kripa se इस आश्रम में, ओम आश्रम जॉर्डन में आप सबका आना हुआ, ऐसे परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज जो आज चाहे अस्वस्थ हैं लेकिन उनकी जीवन की बहुत बड़ी साधना है जो आज हमें ओम आश्रम के रूप में दिखाई दे रही
2: है। सो आई विल मेक अ शॉर्ट ट्रांसलेशन बिकॉज ईच ऑफ दिस टाइटल्स of which our dear Mahamandaleshwar ji is telling for Vishwa

विश्वेश्वरं मोहनं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं रामानुजं संभजे। ब्रह्मानंद सहोदरी श्रुतिमयी सद्वल्लरी पावनी पीयूषां बुद्धिमंथनोद्भवरसा मुल्लाशनी माधवी श्रीमद्भागवताख्य धाम बसति राशेश्वर प्रेयसी पंचाध्याय लसत्तनुर्विजयते राशेश्वरी राधिका

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: Hamare adhyatma mein, religion mein, dharma mein, primary ki 10 पुस्तकें हैं।
1: In the first class of our in Hindu dharma and religion and spirituality, there are 10 basic entrance books, primary books.
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दर्शकम ग्रस्त लक्षणम धर्म लक्षणम। पहला है धैर्य,
1: फर्स्ट इज
0: धृति, धृति मानी धारण करना,
1: सो टू टू एंड्यूरेंस।
0: जैसे अभी सिस्टर गा रही थी
1: पेशेंस,
0: कि हमारे साथ विश्व गुरु जी है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इसी को कहते हैं धीरती, पकड़।
1: सो दिस इज लाइक व्हेन विश्व गुरु जी इज विद अस एंड वी टॉलरेट और वी आर रेडी टू सपोर्ट और बेयर एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम।
0: गुरु जी ने जो आपको मंत्र दिया है, उपदेश दिया है और अपना लक्ष्य बताया है,
1: सो व्हाटएवर द विश्व गुरु जी टोल्ड, गुरु जी गेव यू द mantra, the teachings and all what you have to do,
0: us par pakad rakhna,
1: you have to follow,
0: isko dhirti bolte hain,
1: this is called dhirti,
0: shama,
1: endurance, patience.
0: Koi chhota aadmi agar koi galti kar jata hai to bade aadmi ko उसको क्षमा करना चाहिए, जैसे कोई क्षमा भी मांग लेता है, कोई क्षमा कर लेता है। आई एम वेरी सॉरी।
1: सो फर्स्ट वन वॉज पेशेंस, द सेकंड वन इज टू फॉरगिव। सो व्हाटएवर हूएवर डज समथिंग, यू आइदर फॉरगिव टू देम और यू फॉरगिव टू अदर्स।
0: प्राइमरी की शिक्षा में जो वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, उनको साथ बैठ करके धर्म और भगवान का चिंतन करना चाहिए।
1: सो इन द फर्स्ट क्लास टू द हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड थिंक अबाउट गॉड।
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम प्राइमरी में है, किसी भी वस्तु की, पैसे की, अन्न की, धन की चोरी नहीं करना, नहीं करता है तो वो उसमें पास हो रहा।
1: द थर्ड स्टेप इज नू नॉट स्टील, व्हाटएवर मनी थिंग्स और समथिंग यू हैव दे शुड नॉट स्टील।
0: पवित्रता,
1: प्यूरिटी,
0: पवित्रता बहुत जरूरी है। मैं प्लेन में सफर करता हूँ तो केवल वहाँ ईयर लेता हूँ, बाकी कोई

0: उसने, क्योंकि वो लाते हैं एक्सक्यूज मी वेज नॉन वेज वेज नॉन वेज.
1: So purity, like in an aeroplane, I take only water because, or air, because the people are offering veg, non-veg, and all these impure things.
0: वो पवित्र नहीं होता, शोध मनी शुद्ध नहीं होता.
1: They are not pure, they are not clean.
0: तो धृतिक क्षमा दमयस्तेयम शोचम मिंद्रिय निग्रहा. हमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, जिससे कि हमारा नेचर ऊपर को बढ़े, हम उसमें ऊपर को आवे. ऐसा खान पान आहार व्यवहार हमको रखना चाहिए.
1: सो वी शुड ईट ड्रिंक think, listen, or whatever we do should be in a such a way that our life grows, that we are going upwards in the upper trajectory.
0: हमारे बृद्धारणक उपनिषद में लिखा है, आपका आहार शुद्ध होगा.
1: In Brihadaranyaka,
0: एक मिनट, आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध हो सत्व श्रुति, तो आप विश्व गुरु जी की कही हुई आध्यात्मिक बातों को संभाल सकोगे, पकड़ सकोगे, कैच कर सकोगे.
1: In Brihadaranyak Upanishad it says, if your deeds and food is clean, you will understand whatever Vishwa Guruji is trying to teach you.
0: धीर विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम ग्रस्त लक्षणम. धीर विद्या बुद्धि माइंड, इसको बुद्धि को सदुपयोग में लाना चाहिए. धी मनी बुद्धि. और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है, धी मनी बुद्धि है, माइंड, ये जो है ये शुद्ध खाने से पावरफुल हो जाती है.
1: सो आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड शुड बी फॉर गुड, इट शुड बी प्योर, एंड इट दिस हैपेंस फ्रॉम द फूड.
0: विद्या
1: नॉलेज,
0: नॉलेज जिसको नॉलेज कहते हैं वो विद्या, विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे, उलझावे नहीं, सा विद्या या विमुक्त ही, जो आपको उलझावे नहीं सुलझावे, उसका नाम है विद्या.
1: विद्या और नॉलेज इज दैट व्हाट फ्रीज यू, नॉट व्हाट बाइंड्स यू, व्हाट डजंट कवर यू और मेक्स यू बाउंड, व्हाट मेक्स यू फ्री.
0: आप उलझे नहीं हैं, इस बात का प्रमाण ये होता है कि आपको मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, ईर्ष्या नहीं, ममता नहीं, और संसार के प्रति अट्रैक्शन नहीं है आपको.
1: सो यू आर प्योर व्हेन यू आर नॉट हैविंग ऑल दिस अटैचमेंट टू दिस वर्ल्ड, माद मोह राग द्वेष एंड सो ऑन, ऑल दिस.
0: हमारे वेदों में सर्वप्रथम दो बात की शिक्षा दी गई है, सत्यम बदो धर्मम चरो. सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो.
1: इन वेदर्स देयर आर टू टीचिंग्स व्हिच आर टॉट ऑन द बिगिनिंग, टेल द ट्रूथ एंड फॉलो द धर्म, फॉलो योर ड्यूटी.
0: ए कोर्स आपका प्राइमरी का 15 मिनट में पूरा हो गया.
1: सो यू द first class of the spirituality is done in this 15 minutes.
0: ek hi aadmi ke liye, ek hi sadhak ke liye, ek hi shishya ke liye, ek hi bhakti ke liye foundation mein primary bahut zaruri hai, jo uske ghar se

0: साधना शुरू होती है.
1: सो फॉर एनी साधका एनी भक्ता एनी डिसाइपल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग ऑल दीज प्राइमरी थिंग्स आर नेसेसरी एज अ बेस.
0: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है, ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, ऐसा अलग नहीं है. एक ही रोड के अलग अलग नाम.
1: So there is only one road with the different names. Somebody is calling yoga, somebody is calling gyan, somebody is calling this or that. There are no different roads.
0: Bombay Surat Road, primary. Surat, Baroda, middle. Baroda, Ratlam, high. Ratlam,
2: he's telling the map of India.
0: एक ही रोड के जैसे बम्बई से सूरत, बम्बई सूरत रोड नाम हो गया. और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता.
1: सो लाइक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम बम्बई गोइंग टू सूरत, दिस इज कॉल्ड बम्बई सूरत रोड. व्हेन यू क्रॉस सूरत इज कॉल्ड सूरत Baroda Road, and then afterwards continue. So in the same way, all the spiritual paths are basically going to the same direction.
0: Middle ka arth hota hai yog marg. Jis marg ka naam, jitna ka marg ka naam yog hai, usko yog bolte.
1: The middle school is yog.
0: Yog mein aapke liye 8 pustak hai, jinko aapko dhyan de karke पढ़ के पास होना है.
1: So in the yoga there are 8 books in which you have to study and then pass.
0: यम नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि पुस्तक. यम, यम का अर्थ होता है अपने को यमयति नियमयति दंडयति स्वान, अपने को नियमित करना. उस पुस्तक का नाम है नियम.
1: द बुक विच टेल्स अस हाउ टू कंट्रोल आवरसेल्व्स इज कॉल्ड नियम.
0: नियम, यम अपने को रोकना.
1: यम इज द बुक विच टेल्स अस हाउ टू स्टॉप आवरसेल्व्स.
0: का अर्थ होता है जो योगा के लिए कहा हुआ योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वो नियम हो गया.
1: सो नियम इज दिस फर्स्ट लाइन दैट व्हेन योर थिंकिंग स्टॉप्स व्हेन योर.
0: नियम मीन्स कानून को पास पालन करना, उसको धारण करना, उसको अपने जीवन में लागू करना.
1: टू फॉलो द लॉज एंड रूल्स टू पुट इट इन योर लाइफ, दिस इज कॉल्ड नियम.
0: यम नियम के बाद में आसन है.
1: After that is yasana.
0: बॉडी को सेट करना, बॉडी में जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हाईलाइट करना और उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं. हमारी बॉडी ईयर से चल रही है, उस ईयर को शुद्ध रखना, इसका नाम है प्राणायाम.
1: So
0: और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना, ये है आसन.
1: सो द थर्ड बुक आसन टेल्स अस हाउ टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हाउ टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड सो ऑन. And the fourth book about pranayama is how to control the air and use it for the purification.
0: आसन से आपकी बॉडी शुद्ध होती है और इसी प्रकार से प्राणायाम से आपके अंदर 5 ईयर है, वो 5 ईयर शुद्ध होके और ठीक से डिलीवरी सर्विस करती है आपकी बॉडी के लिए सामान की, मटेरियल की, सामान की.
1: सो लाइक द आसनास प्यूरिफाई द बॉडी, मेक इट क्लीन. द सेम वे द pranayam does for all these five pranas, five types of air, which then service our body properly.
0: उसके बाद में प्रत्याहार आता है. प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है सॉल्ट एंड स्वीट. समझ गए? प्रत्याहार मनी अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से कॉन्टेक्ट सब खत्म करना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं.
1: सो प्रत्याहार इज टू विथड्रॉ वनसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक वनसेल्फ इनसाइड.
0: अभी हमारे अध्यात्म में इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम. फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते हैं, आसन प्राणायाम. फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है.
1: So nowadays in the world it's very famous, the yoga, it's only mentioning just asanas and pranayamas, what is good for the body, but yama and niyama, the rules of outer and inner behavior, that nobody tells.
0: Asan pranayam ke baad pratyahar hona chahiye, lekin aaj ke yogi jo hai vyapar shuru kar dete.
1: So after the asana and pranayama, pratyahara should come, but people started business before pratyahara.
0: Ye mera toothpaste hai, ye mera brush hai, ye meri vaseline hai, ye mere skin cream my.
1: So this is my toothpaste, this is my skin cleaner.
0: Ye mera chamanprash hai, ye mera glucose hai, ye mera wo hai. To pratyahar jahan short एंड स्वीट होना चाहिए था, वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया.
1: सो
0: इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है.
1: सो इंस्टेड ऑफ प्रत्याहार विच मीन्स कमिंग इनसाइड इज व्यापार विच मीन्स एक्सपांड. सो दिस इज नॉट गुड फॉर योगा.
0: अच्छा वो हमारा चेला है, वो इनको पता है सबको. तो उसमें ये है. अब इसके बाद में होता है धारणा. धारणा जो स्वयं का जजमेंट है, स्वयं की स्वीकृति है, स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं.
1: सो धारणा इज द नेक्स्ट बुक, फिफ्थ बुक, विच सेज about its our own capacity, our own capability and so on.
0: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं. ये मेरा संगीत वाला है. धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला. ओ भाई,
1: so you look,
0: संन्यास लेगा?
1: means धारणा
0: नहीं लेगा. नो धारणा.
1: Dharana means actually also concentration. So you look at my the dolak person, if he wants to have sannyasa, so he said no, thank you.
0: हमको एक व्यक्ति ने कहा, आपने अच्छा किया, आपने अपनी 21 पीढ़ी पार कर ली, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत महान हैं.
1: Somebody told me, you are a great person, you cleaned and purified, and you cross over 21 of your family lineage, all 21 generations crossed over this samsara. You are a great person.
0: हमने अपनी चादर उसके गले में डाली, तुम भी अपनी परंपरा को, पीढ़ी को पार करो, तुम भी संन्यास ले लो. उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, no no no no no.
1: So then I said, okay, I took my shawl and I put around that person's neck and said, okay, now you become a sannyasi. You also take your 21 generations across this world. I said, no, thank you so much.
0: तो इसका मतलब है कि वो धारणा में नहीं है, उसकी धारणा अच्छी नहीं है, उसका लाइफ जजमेंट या लाइफ जो उसकी प्राप्ति है वो पूरी नहीं है.
1: So desires in this life, they are not fulfilled for this person, and his concentration towards God, dedication is not there.
0: Dhyan, इसके बाद में ध्यान

0: ध्यान आता है। ध्यान में जो है, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए।
1: Before meditation, you need some knowledge.
0: एक जो है वो ध्यान बिजनेस बन गया।
1: And this knowledge became now business.
0: आप वहां गए, थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी बड़ी बातें की, तो वो एक बिजनेस है। लेकिन ध्यान का, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए।
1: So like this now, these meditation classes and so on, they are there just to make, it's like a type of business, but before you actually start with meditation, you have to have some knowledge.
0: अच्छा ये बताइए, मैंने आपको आपको देना है मनी, तो मनी 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग, 500 का नोट लोगे, कौन सा लोगे? जब मैं कहूँगा कि मेरे से मनी ले लो, मनी रखा है, तो कौन सा नोट लोगे?
1: So if I tell you, please take the money from me and then I give you 5, 10, 20, 50, 100 or 500 rupees, which one you will take?
0: अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप?
1: From all of
0: 500 का ना, 500 का?
1: From all of this you will take
0: 500. 500 का ठीक है ना?
2: 2000
0: का बंद कर दिया मोदी ने यार, 2000 दे दे। 200 का नहीं, कैसी बात कर रहा है? अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी, नहीं लेगा क्या?
1: Yes. So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees, you will take less.
0: सभी अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो
1: Now we are like
0: again hand. Yes.
1: Now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
0: ध्यान उसी का होता है जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज्यादा होती
1: है। So you can do ध्यान, ध्यान which when you value something really much.
0: यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्तोपि दुखेन गुरुणा न विचालयेत। तो जिसकी आपकी दृष्टि में महिमा होती है, कीमत होती है, महत्व तो होता है, उसी को आदमी याद करता है।
1: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
0: आपका, आपके जीवन में आपके बीवी, बच्चे, परिवार का महत्व है। अगर आप 2 घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको कुछ बताएगा भी, तो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका महत्व तो आपकी लाइफ में ज़्यादा है।
1: Like if you have children, wife or husband, and then you go for meditation, even in this, after the meditation, you will continue thinking, or during the meditation, you will continue thinking on them, because they are something valuable in your life. You
0: मनुष्य के जीवन में परिवार होता है, संसार होता है, लेकिन मनुष्य का ज्यादा ध्यान गोल्ड पे होता है।
1: There is a family,
0: क्योंकि गोल्ड कीमती होता है, महत्व का होता है, उपयोगी होता है।
1: The for any human, the life, the family and the samsara, this world is valuable, but the gold is most valuable.
0: इसी प्रकार से जो है समाधि आती है, समाधि। हमारे किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था,
2: दिल्ली में
0: हाँ, दिल्ली में समाधि सिस्टर है। समाधि का अर्थ होता है कि ना आप संसार में हैं, ना आप शरीर में आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट वहाँ कहीं पर नहीं है, केवल ओनली आपका अपने पर ध्यान है, उसको समाधि बोलते।
1: समाधि इज व्हेन यू फील ओनली योरसेल्फ, देयर इज नो कनेक्शन विद योर बॉडी, देयर इज नो कनेक्शन विद दिस वर्ल्ड, यू हैव कनेक्शन ओनली विद योरसेल्फ।
0: हमारे विश्व

0: गुरु जी के ध्यान में, ध्यान शिक्षण में दो प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प एक निर्विकल्प।
1: There are two types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
0: सविकल्प समाधि उसको कहते हैं जहां पर साधक पक्का है और उसको ऊपर उठाने का साधन भी सच्चा है और जहाँ कि उसका गॉड जो उसको पाना है वो भी उसकी समझ में है, इसको बोलते हैं सविकल्प समाधि।
1: So the सविकल्प समाधि is when there is a God who he understands and there is his desires what he wants, so with some desire or with some aim.
0: इसके बाद में निर्विकल्प समाधि है जहाँ पर न तो शिष्य रहता है न गुरु रहता है, ये दोनों गॉड में मिलकर के गॉड हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि।
1: सो इन निर्विकल्प देयर इज नाइदर डिसाइपल देयर इज नो गुरु, दे बोथ मर्ज इनटू द गॉड, अहम ब्रह्मास्मि आई एम ब्रह्मा।
0: ये हो गई अब 12वीं क्लास की, 16वीं क्लास तक भाग तो नहीं जाओगे।
1: So this is 12th class.
0: अब 12वीं क्लास क्या है? भक्ति, जिसको हम भक्ति कहते हैं।
1: So 12th class is भक्ति।
0: भक्ति में, भक्ति के कोर्स में 9 पुस्तकें हैं, 9।
1: In the course of भक्ति there are 9 books.
0: 9 पुस्तकें। बात सुनना तो केवल विश्व गुरु जी की सुनना, बाकी को सबको इग्नोर कर लेना, नहीं हमने सुनना चाहते।
1: सो फर्स्ट
0: श्रवण भक्ति।
1: सो फर्स्ट इज लिसनिंग, सो लिसन ओनली व्हाट विश्व गुरु जी सेज, नथिंग एल्स।
0: अंदर से याद करो तो ओनली विश्व गुरु जी को याद करो, दूसरे को याद नहीं करो, ये कीर्तन है।
1: Kirtan or remembering is that you remember only the verse of Vishwa Guruji, nothing else.
0: Yaad karo, to ek matra Guru aur Govind ko yaad karo, dusre ko nahi, ye smaran bhakti hai.
1: Remembering the smaran bhakti is when you remember only God and Guru, nothing else. There is nothing except God and Guru.
0: Surrender. Charno mein jhuk jana, चरणों में समर्पित हो जाना, चरणों में आश्रय पाना, ये पाद सेवा भक्ति है।
1: So these are the different ways how to surrender yourself to the lotus feet of master.
0: पूजा पूज्य समझो तो गुरु गोविंद को, पूजा करो तो गुरु गोविंद की, दूसरे की किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने की संभावना होती है।
1: So if you do some puja, if you do some ceremony, do the ceremony for God and Guru. If you follow somebody, follow Guru and God, because otherwise you can get lost.
0: अपनी आवश्यकता और गुरु गोविंद का महत्व समझ करके जब वंदना की जाती है, स्तुति है, वंदना है, वंदन है, उसको वंदना भक्ति बोलते हैं।
1: When we start glorifying the importance of Guru and God, then this is called vandana. This next
0: दास्य, सेवक, शिष्य, उसको दास्य भक्ति कहा गया है।
1: Next one is serving, to serve the Guru and God.
0: दास, अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना अहम आकार प्रकार स्वरूप मिटा करके गुरु में समाहित हो जाना उनकी सेवा में, उसको दास बोलते हैं।
1: दास और सर्वेंट इज व्हेन यू रिनाउंस ऑल ऑफ योर आई और ऑफ योर इगोइज्म एंड देन यू डेडिकेट योर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द गुरु।
0: जब आपका मन शुद्ध हो जाता है और गुरु गोविंद को विश्वास हो जाता है तो उस समय पर गॉड भगवान

0: गुरु आपको अपना मानते हैं और आपके साथ मित्रता का विरोध व्यवहार करते हैं, उसको सखा भक्ति बोलते हैं।
1: Sakha Bhakti is the next step, is when you believe and trust your guru so much that he also can become like your friend.
0: हमारे सनातन धर्म वैदिक मार्ग भक्ति मार्ग में धीरे धीरे धीरे धीरे अर्जुन जब कृष्ण के नज़दीक गए तो भगवान ने उनको फिर दास ने रहने दिया, सेवक ने रहने दिया, उनको सखा बना दिया, सखा मित्र।
1: So like Fred. When Arjun was with Krishna, he didn't, after some time, he stopped being his servant, he stopped being his sevak, he became his friend.
0: इसके बाद में आत्मनिवेदन भक्ति आती है। बोलो महाराज जी, अब मैं आपके साथ ही कल सवेरे चला चलूंगा। चलो इसकी तरफ से मैंने बोल दिया। कहते आत्मनिवेदन।
1: आत्मनिवेदन is when you say I'm going with you tomorrow morning, I will go with you wherever you want.
0: वो आत्मनिवेदन है। आत्मनि हमारा ये निवेदन है कि हम आपके यहाँ एडमिशन चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं, और अब हम उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में हमारे गोविंद रहते हैं, गॉड रहते हैं।
1: सो इट्स रिक्वेस्ट ऑफ द सोल दैट आई वांट टू लिव इन दैट कंडीशन, आई वांट टू लिव इन सच अ वे लाइक अ गॉड इज लिविंग।
0: इसके बाद में फाइनल एमए की परीक्षा होती है एक ही आदमी के लिए, वो क्या है, ज्ञान की भूमिका।
1: So the MA, the master degree, is the index of knowledge. It's the last one, or introduction to knowledge.
0: उसमें सात पुस्तकें हैं। उसमें सात पुस्तकें विद्यमान की गई।
1: Seven books.
0: उसमें पहली books क्या है? सुभिच्छा। क्या है भैया? सुभिच्छा क्या है? बोलो गुरुजी। अब मैं आपके पास ही रहूंगा, रह लेना हम काम आना।
1: फर्स्ट बुक इज स्वइच्छा और द ओन डिजायर एंड यू से गुरुदेव आई वांट टू लिव विद यू।
0: अच्छा अब आपको तो हम एक मीडिया बना रहे हैं। अच्छा अब बोलो गुरुजी,
1: गुरु
0: मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे, ले ले संन्यास।
1: द सेकंड वन इज ओ गुरुजी, आई थिंक द सेम लाइक यू एंड गुरुजी सेज ओके देन टेक संन्यास।
0: जब साधक शिष्य का विचार गुरु से मिलता है उसको कहते हैं विचारणा। उसको क्या बोलते हैं?
1: विचारणा।
0: उसको विचारणा बोलते हैं।
1: विचारणा means thinking. It's like when your thoughts and guru's thoughts are equal. You're thinking like your guru.
0: तन मानसा। इसके बाद में जो है पुस्तक है तन मानसा। गुरु से जब विचार मिलता है तो जैसे बड़ी टंकी में से पाइप में से पानी आकर घर की छोटी टंकी में आने लगता है, ऐसे ही गुरु का ज्ञान शिष्य में आने लगता है, इसलिए उसको तन मानसा बोलते हैं, यानी कनेक्शन, बड़ी टंकी से छोटी टंकी में कनेक्शन।
1: सो द नेक्स्ट वन इज तन मानसा, व्हेन द गुरु द नॉलेज ऑफ द गुरु स्लोली स्टार्ट्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्मॉल पॉट ऑफ शिष्य ऑफ डिसिपल।
0: सत्वापत्ति। अब चतुर्थी जो है ज्ञान भूमि सुविच्छा स्यात्, प्रथमा समुदायता विचारणा, द्वितीय स्यात्, तृतीय तनुमानुसा, सत्वापत्ति चतुर्थी स्यात्, पंचमा संसात्मका, पदार्थ भावनी षष्ठी, सप्तमी त्रियगास्मृतम। तो चौथी जो भूमिका है, चौथी पुस्तक है, उसके कारण गुरु में और शिष्य में जो है एकता, एक आकार, एक अभिव्यक्ति और एक विचारधारा बन जाती, उसको सत्वापत्ति बोलते।
1: सत्वापत्ति इज द नेक्स्ट स्टेप व्हेन इन गुरु एंड डिसाइपल देयर इज नो डिफरेंस इन देयर थिंकिंग एंड एवरीथिंग।
0: पदार्थाभावनी कहते हैं, पदार्थाभावनी, जैसे आपको चाय याद ही नहीं आवे, कॉफी याद ही नहीं आवे, चटनी याद ही नहीं आवे, रसगुल्ला याद ही नहीं आवे, आइसक्रीम, फिर 15-15 इंजेक्शन।
1: सो द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन यू इवन डोंट रिमेम्बर, यू नो, नाइदर एनी स्वीट्स और एनीथिंग, एनी फूड यू लाइक, देयर इज नथिंग देयर।
0: पदार्थाभावनी का अर्थ ये है कि आपके सामने स्टोन हो और आपके पास में जो है गोल्ड हो, इस दोनों को आप बराबर समझे, इसको पदार्थाभावनी बोलते हैं।
1: पदार्थ अभाव, the detachment from the anything is like you can have a stone or you can have a gold, for you this is equal.
0: नहीं, पहले असंशक्ति। असंशक्ति ये है, असंशक्ति इसको कहते हैं कि कभी कोई रिलेशन में आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, वाइफ हैं, चिल्ड्रेन हैं, कोई भी है, इनमें आप गुरु को छोड़कर इनमें आपके मन का नहीं जाना, उसको बोलते हैं असंशक्ति।
1: असंशक्ति इज व्हेन यू डोंट थिंक एंड देन यू गो बैक टू योर फैमिली, टू योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन।
0: अब तो हमारा एक ही नारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा।
1: There is only one thing I know, there is nobody of mine and I am nobody's.
0: Padartha bhavani, jahan sona mitti barabar lage, koi bhi upalabdhi, koi bhi prapti, sansar sambandhi, jo apne ko prabhavit nahi karti ho, usko shastra ne asanshakti kaha.
1: So only after you get detached for your family and so on, you can come to this detachment from the things from this world, like gold and all these things.
0: हमारे भागवत में श्रृंगी ने साफ दिया था, परीक्षित को तक्षक काटेगा, और लास्ट में तक्षक आया फणा उठा करके, लेकिन परीक्षित डरा नहीं। आप डरोगे जब कोई आएगा, ईयर वो क्या ना बोलते उसको,
1: सांप, सांप, स्नेक,
0: स्नेक, वो आएगा तो आप बैठे रहोगे कि भाग जाओगे?
1: सो लाइक इन द इन भागवत देयर इज दिस कर्स ऑफ किंग,
0: इसको पदार्थाभावनी बोलते हैं। अच्छा। कि किसी से भी हमको खतरा महसूस नहीं हो, डरने लगे। और कृष्ण भगवान ने कहा, नैनम छिंदंति शस्त्राणी, नैनम दहति पावक, नचैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मार। आपको शस्त्र नहीं काट सकता, पवन नहीं उड़ा सकता, पानी आपको जो है भिगा नहीं सकता है, हवा आपको उड़ा नहीं सकती है, ऐसा आपका स्वरूप है, उसमें स्थित होने का नाम है पदार्थाभावनी। उन पदार्थों का आप पर कोई प्रभाव नहीं, उसको पदार्थाभावनी बोलते हैं।
1: So this is that book Padarthabhav. There is no fear of snakes. There is no fear of death. There is no fear that the fire will burn you, you will drown in the water. That anything will happen with any element. So this is the highest form.
0: Turiya avastha usko kehte hain, jab aapke charon taraf samagri padi ho, vastu padi ho, sab kuch jitna bhi sansar mein wo pada hua ho, aur आपकी उसके प्रति कोई आप में कोई अट्रैक्शन या कोई वृत्ति या कोई वर्क आप उसमें नहीं करते हो, तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं।
1: एंड देन आफ्टरवर्ड्स इज तुरिया अवस्था द प्लेस और द माइंड स्टेट व्हेन यू हैव एनीथिंग अराउंड यू एंड देन यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क इन दैट, इट डजंट अट्रैक्ट।
0: इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरु जी से, इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए, गुरु गोविंद को विश्वास में लाना चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की, वर्क की, वो हमने सफल कर दिया.
1: सो इन आवर लाइव्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वी हैव टू पास ऑल दिस टेस्ट्स एंड वी हैव टू कन्विंस द गुरु एंड द गॉड that we did, and then whatever you invented in us, whatever you effort you put in us, it was successful. So we passed all these exams. This Acharyaji is telling to us that we should success, we passed, and we should successfully pass all Vishwaguruji's tests or effort what he gave. We should fulfill all his wishes.
0: पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति.
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय. देवदी देव देवेश्वर महादेव की जय. इंदुदान सम्राट महाराज नंजी भगवान की जय. राजगुरु महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शोकनंद भारती जी महाराज की जय.

0: देव पुरी समाधि।
1: महामंडलेश्वर का हर स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

just few days or 100 or 50 years or 75 year or 80 year or 100 years and it will remain here. आया सो सब जाएगा क्या राजा रंग बजीर कोई सड़ सिंहासन कोई बांध जंजीर how all will go and these material things will remain here as like before people was living someone here before us now we are here and after some years somebody will hear and we will be somewhere flying in different directions so that mira was said कर कृपा अपनाया जन्म जन्म की पूंजी पाई मेरे सतगुरु दिया मोलक अवस्थी खाया ना खूटे चोर ना लूटे दिन दिन बढ़त सवाया दे मदर्स दे नो ऑलवेज सिंगिंग दिस भजन्स खाया ना खूटे एज मच यू कैन ईट दिस गॉड भजन और रीड और राइट और सिंग ऑलवेज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग नेवर डिक्रीजिंग गॉड नेम नेवर डिक्रीजिंग गॉड नेम ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज जन्म जन्म की पूंजी पाई लाइफ एंड लाइफ ज्वेलरी आई गॉट दिस इन दिस लाइफ खाया ना खूटे चोर ना लूटे द थीफ कैन नॉट स्टील द गॉड नेम द मेटेरियल थिंग्स दे कैन स्टील एनीवन बट नॉलेज विच यू हैव डेवलप्ड इनसाइड द कॉन्शियसनेस द सुप्रीम कॉन्शियसनेस विदिन द यू दिस सुप्रीम नॉलेज गॉड नेम और गॉड ज्वेलरी दैट विद इन यू एंड इट विल गाइड एंड प्रोटेक्ट एंड लीड अस इन द डिवाइन पाथ that Mahaprabhu is in the golden what called the golden text written there if you lead your life according the ethical principle you can fulfill your dharma and you fulfill your dharma and it will lead you in the god direction divine direction every creature have the divine light love all creatures if not more than at least as much as yourself that is divine sense this is what I'm talking or what I'm preaching this all from this mahayogis gurus paramparas rishis divine names divine jewelries sat ki nav kevatiya satguru bhaiya theek hai sat ki nav kevatiya satguru bhavsindu tiraya भवसिंधु तिराया दैट कॉल के सत की नाव द ट्रूथ बोट एंड सतगुरु इज गुरुदेव इज इज रोलिंग बोट भवसिंधु तिराया ही लीड मी दस क्रॉस दिस ओशन के बाई मीरा प्रभु गिरिधर नागर के बाई मीरा प्रभु गिरिधर नागर हरस हरस कर हम यस गाया ओ गुरुदेव यू आर डिवाइन यू आर ग्रेट यू आर द my prana haras haras kar haras means happy and she was singing the bhajans day and night and kar kripa moye bhavsindu tiraya girdhar nagar girdhar means krishna girdhar means guru girdhar means the god moye bhavsindu tiraya so that is a divine path for human life and we are happiest one there we are blessed one that we have this parampara and we are always praying and singing and always thinking to gurudev and god and that is holy guruji's many bhajans one of them one bhajan teri sat

तम सकल जग के अंतर्यामी चराचर की माँ प्रभु चरा की आत्मा। श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की अलकपुरी जी महादेव देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।

जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this and they are lying doi. To inko dono behno ko ek taraf lagao next time. Kyun aata hai bhai? Aisa hai ki aap ya to yahan se aake bitha do ya wahan se. Aap do baithe ho to piche wo log bhalai yun dekhe ne phasa yun kare hain. जरा बस मैं कहूँ कि अरे सोनी भाई बैठ रहे, मैं तो हमें ठीक है, हमें थोड़े थाने कटे उठाऊँ कभी, आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग सत सत और संग सत सत क्या क्या है, कितना है, क्या है, कैसा हुआ है, तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा। सत्संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे, संग किसके साथ में रहना है, जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी, दैट इज कॉल्ड सत्संग। The sat, sat is the good things, bad things, everything. Sat sang, then it is said, please come with me. We stay all together. We all be together like one. Yes. Then it is okay. Otherwise, other sit and like this, say, do aage you kare, phir aage bade bade aadmi hota hai na. वो बड़ा बड़े का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ मैं, उसका कह रहा हूँ जो थोड़ा छोटो आदमी है नहीं, वो तो बैठो आगे, और मोटो मोटो बैठा आदमी तो वहाँ से आप देख सकते हो। एंड इफ यू नॉट दिस लाइक दैट देन दे आर लुकिंग ऑलवेज दिस साइड, फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे, तो फिर वो इधर करे, फिर वो ऐसा करता तो। सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न who should be here first and then second and like this, then we have all. So this is sat. Sat kya hai, wo sat kahan hai, wo sat kahan se aaya hai? Sat keval manushya ke liye nahi hai, janwaron ka bhi hai, wo bhi aata hai तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है छोटे होते हैं ना ऑल चिल्ड्रन, सो तो ऑल पीपल दैट एवरीवेयर दे टेल टू देम देयर मदर, यस मदर बट वेयर मेक द चाइल्ड, यस इन माय लाइक दिस इवन दैट then it is said yes this is very good. So child is going front and mother is behind it, taki the children can be with mother very nice and that, and not going out then what happens is something. So sat wo satya hota hai, satya hi sat hai, satya hi satya hai, wo hi satya kahal ja gaya hai. तो सत्संग, और वो संग किसके है कि सभी के एक साथ, सभी को किसी बक बट अदर वन वी विल गो दिस एंड बट गो टू सिट लाइक दैट. सो व्हेन वी कम यू शुड कम फर्स्ट ऑलरेडी वेयर यू आर सिटिंग. सो वेरी नाइस सत्संग. तो सत्संग के बारे में एक भजन लगाओ.
एक भजन लगाओ सत्संग का, सत्संगियों की, सत्संगियों की सन है ना भजन अपना बाप जी का है ना, हाथ लगाओ तब बेटा बाप जी का, माधवानंद जी का है भाई। माधवानंद जी भगवान सारे विश्व में पधारे हुए हैं वो भी, और महाप्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह, एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए, वहाँ नहीं तो वो मेरे, तो मेरा देश है ना यहाँ पर, मेरा देश बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, सो मैनी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज बट दे आर सिटी सिटी कंट्रीज है, बट अ वेरी बिग वन आर लाइक फिफ्थ इज आवर हमारा, तो इतना वो जो है दैट वॉटसन इज कमिंग फ्रॉम थेट फार फ्रॉम दिस वेर इट इज वाटर एंड इन वाटर में देर स्टिल वी आर अवर लैंड इज अवर लैंड वेरी मच यू नो दैट इट वॉज दैट टाइम वेल दिस ऑल द क्रिश्चियंस और दूसरे भी जो है ना दे कम इन साइड एंड दे टॉक द इंडियंस ऑल लाइक दिस सो डोंट गो हो नो स्कूल जाना देना कुछ करना नहीं था ओनली दोज हु आर लर्निंग वेरी पीपल सो दे वेर लाइक डॉक्टर्स एंड दिस और दिस अदरवाइज ऑल पीपल वॉज अभी भी आपको ले रहे हैं अभी भी उनको बराबर नहीं जाने देते हैं है? तो फिर कितना करते करते मोदी जी के नहीं मोदी जी क्या दूसरे तो वहाँ सिफा कितना लटक कर किया या किया वो वहाँ कहाँ पर बैठे रहे लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरीवन दे brought the already to India. So India ka kitna very big. I have not seen everything. India itna lamba chada hai, I was not here. I went to other countries. But I see somebody this and that and that. But how many countries have there and all have different language. Many language hai Bharat mein. Lekin unhone sab karke Hindu bataya. Aur Hindu kahan se? Hindu bahut dur se hai ye. Kya nahi? Hindu kahan ka, kisko kehte hai, batao? Haan. Hai? नहीं संस्कृत में तो है सिंधु हाँ तो सिंधु तक का है हमारा इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना तो अभी हमारे क्या कि इस साल में ऐसे आगे इन लोगों ने मुसलमान आगे खूब करा दिया वो है लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी बहुत बस है दिखता है उनको और वो

आगे भगवान ही है बस, और किसी के ऊपर है ही नहीं। और दूसरे कोई भी है, क्रिश्चियंस है, वो है, हिंदुओं है, उनके सबका है। तो वो जितने मुसलमान हैं, तो पहले हमारे हिंदू थे, सब हिंदू हैं, लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस। सो therefore we know that everything that in my country and where my country that when I go to the airport and then is everywhere, yeah. So I'm coming always with aeroplanes, yes, and I see there, from that I see it's our India, hamara idhar se, so that all my disciples from other countries, they have all understood everything and they practice here all the times and coming. Don't worry, they are not, but we want to come to here. The Swamiji have Maheshwaranand. So I said, what do I do? I didn't do anything now. But he was doing it for me. Haan, pehle maine karaya, but he said, I told them, but he didn't know. I have done. And what do you, what will do? And so my disciples, that everybody in the whole countries, whole world countries, ki, up they are come and made. So in government, India mein kehte hain ki Maheshwaranand hai, wo apne ko Hinduon ko isko bulaya hai, hua hai. So, waise hi karna chahiye. Aur maine kabhi nahi kaha inko ki inko Hindu karo. मैंने किसी को ना कहा कि हिंदू बोलो, नहीं, आप क्रिश्चियंस को बोलो, आप उसको बोलो आपका, लेकिन बोलो कैसा, क्या आप करो, ये बात है। नहीं तो मैं अगर ये इतना था कि नहीं नहीं मैं तो हम मुसलमानों को इनका नहीं करेंगे वो, और मैं रहूँगा तो फिर पड़े रहोगे ही, वो तो आगे भी पीछे में। बट नाउ द मैनी पीपल हैव हमारे डिसाइपल्स हियर ऑल, they come, they are not coming here for working here, they are coming for Mahaprabhu ji ke, aur Mahaprabhu ji ke, Mahaprabhu ji Devpuri ji ka, wo jo hai, that is the first. And so Madhavanand ji, he went he from his house, from his house he went out, it was only like this. And he brought Mahaprabhuji. Mahaprabhuji jo hai, he came to my village, to my mother. And here my was staying in my house. And there was one very nice person in Rupavas mein. Aur wo thoda matlab theek nahi tha, to dheere dheere chalte the. But he was no very great. Standing, very great. वो महाप्रभु जी के पास आए थे तो वहाँ बिठा दिया कि बैठो और पढ़ाओ। तो बाप जी के वो नहीं थे इतना, छोटा से ही सेम बाप जी महाप्रभु जी, एंड वो आते थे देन घर पे आते थे, फिर वो आते वो बैठते थे। तो माधवानंद जी, अवर स्वामी माधवानंद जी बाप जी ने निपला हमारे रूपावास में रखा है। रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे, अभी भी है, अच्छा ही है, लेकिन वो थोड़ा अब डब चब लगे हो गए यूँ से भी जगह हैं। हाँ, लेकिन वो नहीं होगा, वो हो जाएगा, वो अच्छा ही होगा, वो भी अच्छा होगा। और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव हैं, तो रूपावास कंट्री इज द जहाँ जहाँ, वेर एवर आई एम इन अदर कंट्रीज, वेरी मैनी कंट्रीज, तो वेर आर यू गोइंग टू रूपावास? यस, माई नेम इज रूपावास इन द होल वर्ल्ड। 18 गांव वाले रूपा है वो नहीं जाने, लेकिन वो मेरा रूपावास गुजरात वो वगैरह से भी हो, लेकिन हमारे रूपावास। तो वो ठेठ तक जब भी मैं जाता हूँ कि कहाँ से महेश्वरानंद का है कि कहाँ रूपावास।

0: और वो चल रहा है। अब वो छोटे मोटे लोग हैं, उसमें तो कुछ होता ही है ना, और होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या पता करें। तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य ही है। अब किसने वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया है, सबका नाम दिया कि किसका नाम है, कौन है रे, कि मैं मनुष्य हूँ बस। अब हम मनुष्य है, तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है। जाति हमारी एक भारत की है और वो सभी को उसी को करूँगा मैं, आप देख लेना। हाँ ठीक है, आप मेघवाल हो, गरग से हो, जो भी हैं, सभी हैं, वो है ही है, लेकिन है वो मेरा मनुष्य, मेरे देश का, तब देख लेना। उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा। हाँ है कि नहीं, प्रेमानंद जी ने, हाँ प्रेमानंद जी कहाँ हैं, ये प्रेमानंद जी, अच्छा प्रेमानंद जी तो हमेशा इसका प्रेम, इसका नाम ही प्रेम, प्रेम की बोलो, हाँ तो वो इनका है प्रेमानंद जी का। प्रेमानंद जी का इतना बहुत गांव देश है और देश में गांव बहुत बढ़िया है और पहाड़ों के ऊपर में भी नीचे सभी जगह है और इनका मकान या इतना बड़ा है, उसके अंदर में बहुत बड़े उनके उनके माता पिता जी का है। ओके लेकिन आप देखेंगे, उनको देखेंगे कितना इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं, कितने वृक्ष है, अभी भी खूब वृक्ष है प्रेमानंद जी का। तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में, मैं गया था कहीं, तो ये भी आए, एक बार आए दो गए फिर वापस आए, और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है, प्रेम की बोलो, श्री दीप नारायण भगवान की जय।
1: श्री मारवानंद जी सदगुरु।

श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण यन श्रीमन्नारायण।

0: भगवान
1: की जय।
0: देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।